एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सुमित अलिया हमारे में 8 बजे का छ
1: समय को साथ में जितु सुनचा दी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

हिजो अथमा धनगढी भोलि तिमी के केएम भोलि तिमी के केएम हिजो अथमा धनगढी भोलि तिमी के केएम हुँदा हुँदै कमेलैको रेस्टुरेन्टमा भेटिएम।

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी इस छोटो व्यापारिक विश्राम संगे पुनः स्वागत कार्यक्रम का मिस्टिका भाग में यहां साझा हमी कार्यक्रम का मिस्टिका भाग का बुधवार व्यवसाय में छो बुधवार व्यवसाय में रहे तपहर समक्ष सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में जोड़े अगाड़ी बढ़ने चमर्क में जुटी रहता बेला को क्रम में हमी अर्क भाका जोड़ सही भाका संगे हमी पुनः उपस्थित होने नहीं हमी संगे रहन्हला।

0: access to all.
1: Benji Khaimud Billy. क्योंकि एटीएम मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग के गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो ही माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर जिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर जिमो न्यो ताने सतर्क तना ठद्र क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई रेडियो आदिखोला 105.4

0: सुनोस ना,
1: अली हमरो गाड़ी में
0: 10 बजे तक था।
2: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।